तेरा ठा भी सोना, तेरा रूप भी सोना, तेरे भगत भी सोने। सुंदर स्वामी धाम मालक दा दर सोना है, एक गल दा ख्याल रखना है। मालक दा दर केड़ा है, सो दर के हा, सो कर के हा, जित दर वसे कवन दर कही है, दरा भीतर दर कवन लहे।

0: पौड़ी चिट्टा अंदर सबको विख नदरी हेठ चलाए दा आपे देवड़े आई आपे ही कर्म कराए दा
1: वड़ा वड़ा वट मेदनी सिरे सर धंधा लाए दा नजर पठी जे करे सुल्ताना ठाव कराए दा धर्म अंगर देख ना पाए दा
2: You are listening to SeekNet Radio.

बाबा नामदेव जी नाम जपद्या जपद्या ऐसी बिरती आप दी ब्रह्म ज्ञानियां दी अवस्था प्राप्त हुई के ठाकरां दे इशनान करन लई जल परन गए ते मन विच ख्याल आया भई 42 लख जी जल में होते बीठल पैदा काहे करो। 42 लख जून जल विच है, 42 लख जून इस तरत आकाश ते है, हुन बीठल नू मैं वखरा किवें भोग लवावां। हे भगवान, हे ईश्वर, हे वाहिगुरु, जिथे किथे तू ही तू है, कोई दूसरा नजर ही नहीं आ।

साहिबे दो आलम बानी के बोहित नाम के जहाज साहिब धनगुरु अर्जुन पातशाह सतगुरु जी अपने मुखार बिंद तो अपनी रचना तो इन्हों बचना का उच्चारण करते ने हजूर फरमान करते ने प्यारिया गुरु नाल प्रीत किदां दी लाउणी है मालक नाल स्नेहे किदां दा जोड़ना है साहब जी सानू ओ रस्ता ओ मार्ग ओ प्यार भरे बचना नाल उन्हां जुगतियां नाल सानू ओ रस्ता दसते ने जिस रस्ते ते जिस मार्ग ते जांदे आ तू गुरु नानक नू मिल सकना साहब कृपा करदे ने बख्शिश करदे ने कलजुगी जीवां ते भाई हजूर कहंदे ने

सह उपदेश करते ने प्यारे अहंकार नहीं करना, अभिमान नहीं करना। धन गुरु रामदास पातशाह हजूर कहते ने अहंकारियां निंदकां पिठ दे नाम देव मुख लाए। नाम देव वर्गियां नू सतगुरु ने अपने हिरदे नाल ला रहा, अहंकारियां नू पिठ दे दित्ती मुख नहीं लाया। जिना नाम जपया सिमरन कीता भावे कोई वड्डा है भावे कोई नीवे, लेकिन भाई सिमरन करन वालियां नू नाम जपण वालियां नू सेवा करन वालियां नू मेरे साहब अपने गल दे नाल ला लेंदे ने। हजूर कहिंदे ने मान ना कीजै शरण परी जाए, हंकार ना कर प्यारे अभिमान ना कर, गुरु दे चरणा विच उहदी शरण विच आ जाए।

शैव फरमान करते ने गुरु कितना प्रसन्न है, गुरु कितना दयाल है, गुरु कितना रहमतां दा साईं है। एक पल भी नहीं विछड़दा प्यारिया, पाछा तू मेरे ते कृपा कर, किड़ी कृपा कीती है, कितनी रहमतां कीतियां ने, कितनियां रहमतां दा मीह बरसाए मेरे ते। धन देंदी साच सनेहा, एक मेरा सुनेहा है प्याछा,

गुरु नानक दी मोर ला के धन गुरु अर्जन पातशाह साहब कृपा करके आंदे ने प्यारे कौ नानक छंत अनंत ठाकुर के उस मालिक दे कितने मैं गुण गावां बेअंत है मेरा पातशाह बेअंत है मेरा मालिक बेअंत है रहमतां दा साईं कितने गुण गायन करन हजूर बाणी विच कहिंदे ने

साहब जी रचना ते इको ही है लेकिन तेरे गुण बहुते ने। भगत कबीर जी महाराज उस मालिक दे गुणा दा अथाह बयान करदे होए अपने रचना तो कृपा करदे ने ते

धन गुरु अर्जन पातशाह। साहब अपने मुखार बिंद तो आंदे ने एक घड़ी दिन समो को बहुत दयारे, ए मेरे मालिका एक घड़ी भी एक पल भी तेथों जे मैं बिछड़ जाना ते इंज लगदा है कितने ही जुग बतीत हो गए ने, कितना समा लंघ गया।

नेता साहिब की बात जे आखाए कहो नानक क्या दीजे शीस बंदे कर बैसन दीजे बिन सिर

जिथे तेरी सांझ बनी उथे मेरी भी सांझ बना दे। मैं अपने मन की अवस्था उन्हां कोल आखां जिहड़े तुरे होए ने पहुंचे होए ने इस मार्ग ते जिन्हां ने चार कदम तय किए हुए मंजिला मारदे तुरे जा रहे ने जे ते उह जिहड़े मंजिला मारदे जा रहे ने साहिब कहिंदे ने अखाउंदे ही नहीं केवल उह की करदे ने उद्दम करे भलके प्रभाती अमृत वेले। प्रभात का मतलब है सूरज चढ़न तो बहुत पहला डान ते मारन विच फर्क है। जिसने सूरज चढ़दा है उसनू डान कह देते हैं लेकिन सवेरा इस तो पहला सवेरा का मतलब होंदा है चंगा वेला सवेला। सूरज चढ़न तो बाद जिहड़ा बंदा भगती की गल सोचता है ना वह कवेला कर देता है। सवेरा जिन्हां ने सामना है वह अमृत वेले सूरज चढ़न तो बहुत पहला पहला अपना काम नबेड़ते हैं। जेड़े इस मार्ग से तुरे हुए ना भाई साहब तो बड़ी खूबसूरत गल कही। भाई साहब कहते हैं ऐसे लोग

जंग बाहर ली है, बुराई नाल जंग है, लेकिन बुराई तो अंदर भी चलनी पई। जिसने बंदा इधरों बाहरों वेला हो साहब कलगीधर पातशाह को सिखा ने सवाल किया महाराज हुण तां कोई लड़ाई झगड़ा जंग कोई नहीं रह गई, की करिए अजकल की करिया करिए। साहब कह लगे युद्ध जारी रखो। हैरान हो गए, कह लगे महाराज हुण आपस च लड़िए, युद्ध किहदे नाल जारी रखिए, लड़न वाला दुश्मन ही कोई नहीं, सारे भगौड़े हो गए, छड गए, भज गए, हुण किहदे नाल लड़िए, युद्ध जारी रखिए, कैसा युद्ध। वैसे महाराज ने यह भी रोजाना के नितनेम शामिल किया, रेजाबाजियां करो, तलवारबाजियां करो, शरीर की कसरत भी करो, शस्त्र धारनी होके शस्त्र की विद्या प्रवीण होने का जतन भी जारी रखो। लेकिन इतने जिसने महाराज ने कहा युद्ध जारी रखो, महाराज कितने ना लड़िए। धन जियो तेह को जग में मुख ते आ चित में युद्ध विचारे, बारला युद्ध भी चित का युद्ध भी, वो केड़ा युद्ध है। महाराज कहन लगे अंदर तुहाड़े ते थोड़ियां धारा पैंदियां ने, कदे काम हमला करता है, कदे क्रोध, कदे लोभ मोह हंकार, इन्हां नाल अंदरों ज्ञान है की बढ़नी मनो हाथ ले कातरता कुतवार बुहारे, ज्ञान दा शस्त्र लैके अंदर दी बुराई नूं वढ़दे चले जाओ, अंदर दी भी सफाई जारी रखो, युद्ध अंदर भी चल सकदा। खालसा सोए जो चढ़े तुरंग, जो मन दे घोड़े ते सवारी करे, मन नूं काबू च रखे, डिसिपलिन च रखे, सिक्खी दे डिसिपलिन च रखे मन नूं। शरीर दा डिसिपलिन है कि रहतां दा धारी होवे, ग्रहतां तों बचिया होवे। मन दा डिसिपलिन यह है कि काम क्रोध लोभ मोह हंकार दे काबू ना, इस घोड़े नूं लगाम पा के बाणी अनुसार खालसा सोए करे नित जंग बुराइयां नाल। अंदर भी बुराइयां नाल जंग करे, बाहर भी जंग करे। साहब कहंदे ने ऐसा गुरु का सिख उपदेश गुरु हर हर जप जापे, सब किल लिख पाप दोख लह जावे। किसने गुरु के बचना अनुसार एक डिसिप्लिन च जीवन बतीत करेगा ना, पाप धोते जाणगे, दोष खत्म हो जाणगे, दोख कहंदे ने दोष नूं, दोष खत्म हो जाणगे, जीवन चो बुराइयां निकल जाणगे। जो सास गिरास ते आए मेरा हर हर, स्वास अंदर आवे स्वास बाहर जावे, ए वाहगुरु सिमरन जुड़िया हो। आम तौर पर ऐसा भी करते ने, स्वास अंदर जावे ते वाह कहते, स्वास बाहर जावे ते गुरु कहते। सहज अवस्था में इस तरह जपते फिरते चले जाते ने, कई कदम कदम जपते ने, कई कारोबार करदे हुए कोई भी हरकत कोई ताल मिल जाए उस दे नाल वाहगुरु सिमरन का यतन करते। लेकिन कई बार ऐसा भी होंगे सहज अवस्था में सिमरन करद करद मन की स्थिरता प्राप्त नहीं होती, मन टिकता नहीं, वास्ते कई बार मन नाल जूझना भी पैंदा। ऐसा भी किया गया, गुरमुख गुरसिख जोर ला के भी सिमरन करते ने, साह की चाल तेज कर देंगे, काली काली साह लेंदे ने ते अंदर साह जांदे आ वाहे बाहर साह जांदे आ गुरु कह के, वो अपने आप नूं तान लेंदे ने, बिल्कुल तन के जिसले सिमरन करते ने, उस सिमरन का प्रभाव नाभी तो लैके शीस की चोटी तक हुंदा चला जांदा है, मनुख नूं चरनाटा छिड़दियां ने, रस आउंदा है, आनंद आउंदा है, ते फिर सुभाव बन जांदा है, फिर तुरदा फिरदा कारोबार करदा, इहदे स्वासां विचों वाहगुरु सिमरन दी खुशबू आउंदी चली जांदी। उहनूं कहिंदे ने उठत बैठत सोवत नाम, कहो नानक जन कै सदकाम, इहदा काम ही हो जांदा, उठदियां बहिंदियां सुतियां भी इहदे स्वासां विच सिमरन दी लड़ी बणी जांदी। जो सास गिरास ध्याए मेरा हर हर, सो गुरसिख गुरु मन भावे, इहो जिहा गुरसिख गुरु नूं चंगा लगदा है। जिस नूं दयाल होवे मेरा स्वामी, जिस दे साहिब दी रहमत हो जावे, झोली अड देवे मत्था टेक देवे दुरमत त्याग देवे गुरमत लै लवे डिसिप्लिन च आ जावे, वो दया दा पात्र बनेगा। जिस दे साहिब दी रहमत हो जावे फिर इस गुरसिख गुरु उपदेश सुनावे, गुरु का उपदेश वो सुनदा है, गुरु उपदेश उस नूं सुनाउंदा है, वह बंदा उपदेश लैके उपदेश देने जोगा भी हो जाता है, आप ही जपदा है होरां नूं भी जपाउंदा है। साहिब उहनां दी गल करदे, सो गुरसिख तन तन है जिन गुर उपदेश सुनिया हर कनी, गुर सतगुर नाम दृढ़ाया तिन होमे दुबदा पन्नी, बिन हर नावे को मित्र नाही विचार डिठा हर जनी, जिन्हां गुरसिखां को हर संतुष्ट है, जिहड़े नाम नाल रचे ने संतुष्ट होए ने नाम नाल, जिन्हां दा मन भिज गया तिन सतगुर की गल मनी, जो गुरमुख नाम ध्याए दे तिन चढ़ी चवंगण मनी, वह चढ़ती कला च जान उन्हां नूं चा चढ़दे ने खेड़े चढ़दे ने, जिंदगी खुशियां नाल भर जांदी, ओह जिंदगी दियां सिखरां नूं छोंदे। बल्कि महाराज ने पावन बाणी जैसा भी कीता, धन धन सो गुरसिख कहीए जो सतगुर चरनी जाए पया,
तन तन सो गुर से कही है जिन हर नामा मुख राम कया। तन तन सो गुर से कही है जिस हर नाम सुने मन आनंद भया। तन तन सो गुर से कही है जिन सतगुर सेवा कर हर नाम लया। तिस गुर से को हो सदा नमस्कारी जो गुर के भाणे गुर सिख चले। जो गुरु की रजाज चलता है, गुरु के हुक्म च चलता है।

हे करुणा निदान, हे पतत पावन कृपा निदान जगत गुरु, तेरे तो बिना मैनू कोई आसरा नहीं। किस ही को

0: You are listening to SeekNet Radio, broadcasting live Gurbani Kirtan 24 hours a day from around the world.
1: कुछ समय पहले लुधियाने तो बीबी अमरजीत कौर होरी शब्द कीर्तन वाले साढ़े को ननकाना साहब तशरीफ ले आए उन्होंने दित्ती हुई कविता पेश है पटने विच चन अज चढ़िया

0: सरदार, पहला तो एक पिंडा शाल उठा, फिर आंद्रा नहीं घोर शव करता फेरता।
1: शाबाश शेरिया, ये माल सारे जान दे।
0: जो कम सरदार। अरे जबरा, अरे थोर, जो जबरा।
2: मेरी बॉडी ना देख रही पागल हो जाएगी।
3: मेरी सिंगिंग से कार्य देसी की होता दीवे वालों।

0: परेशानी हो रही है दौड़िया। मैं जो कुछ भी कीता इसलिए कीता कि तू आज भी पैरा नहीं, हालात ने तेन पैरे गर्म करने मजबूर किया होगा। देख ले इन्हें दौलिया जिन्हें साथियों ने तेन इना माण सी तेन अकलिया छड़ के नस गए।
1: तू आज मेरी अखा खोलती है सच जी।
0: दौले खां तेरे अंदर वो खूबियां ने जिन्हों सही राह से लगावे तो एक महान इंसान बन जाएगा।
1: महान इंसान ये किस तरह हो सकता है? मैं तो खौरिया किन्या के खून हाथ रंगे ने, किन्ने जुल्म किए ने।
0: परमात्मा बख्शन हार है, ऐसा ना लैन ना तेरे अंदर एक जागृति आएगी, फिर तू दौला डाकू नहीं दौलत खा फकीर रखवाएगा। याद कर खुदा नू पढ़ करना
1: कलमा। मैं तो एक अनपढ़ गवार हूं, मैं कि जाना कलमा की हुंदा सन।
0: अव्वल अल्लाह नूर पाया कुदरत के सब बंदे, एक नूर ते सब जग उपजा कौन भले को बंदे। बोल या अल्लाह
1: या अल्लाह।

जैसी आज्ञा कीनी ठाकुर तिसते मुख नहीं मोड़ियो सहज आनंद रखियो गृह पीतर उठ उहाँ को दौड़ियो आज्ञा में भूख सोई कर सुख सोग हरख नहीं जानियो

दुख विछोड़ा, एक दुख भूख, एक दुख शक्तवार जमदूत, एक दुख रोग लगे तन ताए वैद ना भोले दारू लाए। साहबा ने दुख गिने ने बंदे दे, बंदे नाल बंदा विछड़ जावे ते दुखी हो जाए। जिथे मोह बनिया हो, प्यो पुत्र विछड़ जान, भरा भरा विछड़ जान, मां पुत्र विछड़ जान, मावां धियां विछड़ जान, दुख वापरदा। मगर साहब का इशारा होर पासे कर दे, कहिंदे ने वालू नाल विछड़िया बंदा किन्ना दुखी। दुख विछोड़ा, एक दुख भूख, एक नित दी भुख, राती सुते खा के दिने फेर खली। हर वेले मनुख दे अंदर नहीं उस भुख की गल नहीं जिहड़ी रोटी की लगती, एक होर भुख की गल बाबा जी कहिंदे ने जिहनूं तृष्णा कहिंदे आ, मिटण विच ही नहीं आउंदी। सब कुछ हुंदियां सुनियां भुख कायम है, खा पी के भुख कायम है, उस भुख ने बहुता दुखी कीता। रोटी की भुख बंदे ने जर ली होवेगी, लेकिन तृष्णा च बंदा बड़ा दुखी हो। एक दुख शक्तवार जमदूत, एक वड्डा दुख बंदे वास्ते मौत तो बाद की बनेगा, लेखा किवें देवांगे, सुरखरू किवें होवांगे। चौथी थां ते महाराज कहिंदे ने एक दुख रोग लगे तन तहाए, आ कदे कदे शरीर ते भी दुख आ जांदा। तू किथे किथे दवाई लावेगा, किस किस दुख दा दारू करेगा, पर जदों गुरु दी रहमत हो जावे ना सारे ही दुख दूर हो जाते। दुख बिन से पूर्ण पही खाल, कदों जदों गुरु की बख्शिश हो जावे, रहमत हो जावे, सतगुरु दयाल हो जान, एक गल वखरी है। सत्संगत इस तो कुछ साहबा ने कहा ना, गुर पूरे जब भय दयाल, ऐसा मतलब नहीं समझना कि जदों कदे महाराज दयाल होणगे तां किते गल वापरेगी। सतगुरु सदा दयाल है भाई, गल इन्नी है कि उहदी दया दा पात्र बनन वास्ते मैं कोई यतन कीता है कि नहीं, मैं निम्रता नाल उहदे चरणां ते मत्था टेकिया कि नहीं, मैं उहदी रहमत वास्ते झोली फैलाई है कि नहीं। जद भी मैं उहदी दया दा पात्र बनन वास्ते निम्रता सहित झोली फैलाई, मत्था टेकिया है, रहमत अवश्य होई, और उस रहमत दे नाल मेरे दुख दूर होए। इन्हां नूं दुख किया है, ते इन्हां दुखां दे पिछे जो इन्हां दे कारण ने उन्हूं दोख भी किया है। दोख कहिंदे ने दोष नूं, गुनाह करिए ते दुख पले पैंदा। ते पावन बाणी च तोका हुंदी है ना, मृग मीन भृंग पतंग कुंचर एक दोख विनाश, इन्हां नूं एक एक दोष है। मृग नूं कन्नां दा दोष है, सुनन दा कुत्ता शौक है इसनूं, कंडे हेड़े दी आवाज च फस के मारिया ते फड़िया जांदा है। मच्छी नूं जीवा दे स्वाद दा रोग है, दोष है। जेवा सादी लीलत लोह, स्वाद दी मारी होई, बाहरों आया गडोआ या बाहरों आया जो कुछ भी मसाला लगा है कुंडी दे नाल, उन्हूं निकल लेंदी है, कुंडी निकल लेंदी है, फस जांदी है। परेंग नूं पंवरे नूं सुगंधी दी तीबर इच्छा ने रोगी बना रखे, पतंगे नूं नेत्रां दी भुख ने, अखां दी भुख ने, रोशनी वेख के बावरा हो जांदा। हाथी नूं काम दा रोग है, मगर महाराज तां कहिंदे ने बंदे दा की हाल होवेगा। पंच दोख असाद जामै तां की केत कास, बंदे नूं तां पंजे ही चंबड़े ने। इह कन्नां तों वी कमला, इह नासां तों वी कमला, अखां तों वी कमला, जीवा तों वी कमला, इंद्रियां सारियां तों कमला, काम तों वी कमला, इहदा की हाल होवेगा। सतगुरु जिस दिन कृपा करदे ने ना, उस दिन इन्हां दोषां तों बचाउंदे ने। बंदा जिस दिन दोख तों बच जांदा है, दोष तों बच जांदा है, उस दिन दुख तों भी बच जांदा है, क्योंकि दोष तों ही, दोख तों ही दुख पैदा होंदा है। दोष नहीं रहा, दोख नहीं रहा ते दुख भी नहीं रहेगा। गुर पूरे जब पहे दयाल, दुख बिन से पूरन पही कहार। हुण सतगुरु तां रहमत कर दित्ती, मैं की करां, मैनू की करना चाहिए। साहिबा ने साडे वल संकेत कीता कि हुण तू अपना फर्ज पछाण। गुरु ने तैनू दोषां दे चिक्कड़ विचों कढ के दुखां तों बचाया, तैनू की करना चाहिदा। उह संकल्प महाराज ने बख्शिया, पेख पेख जीवा दर्स तुम्हारा, सतगुरु जुड़िया रवां तेरे नाल, चरण कमल जाई बलिहारा, तेरे चरणा तों वारने बलिहारने जांदा रवां।
तुझ बिन ठाकुर कवन हमारा अज तेथो विछड़ गए मुड़के दोष आ गए मुड़के दुख आ जाणगे तेरे बिना कौन है जो बचाई रखे दोषां तो ते दुखां तो साध संगत से प्रीत बन आई पूर्व कर्म लिखत तुर पाई ए भी तेरी रहमत जप हर हर नाम अचरज प्रताप भगती च लख के ऐसी सोहनी गल बनी है ऐसा आश्चर्य प्रभाव वाला काम होया प्रताप वाला काम होया कि जाल ना साके तीने ताप हुण आद ब्याद उपाद वापर नहीं सकते हुण ता मेरे ते रहमत करो मेरे सतगुरु निमुख ना विसरे हर चरण तुम्हारे तुहाडे चरणा कमलां तो एक पल वास्ते भी ओझल ना होवां ओले ना होवां भुल ना जावां तुहानू नानक मांगे दान प्यारे मैं तो यही दान मंगदा निमुख ना विसरे हर चरण तुम्हारे बंदा एक चादर दी बुकल मारी तुरिया जा रहा सी सिखा ने वेखिया कहन लगे महाराज कोई सुइया जापदा है कोई खुफिया जापदा है जासूस लगदा है जेड़ा किले दे नेड़ियों लंघिया जांदा है मूंह सिर छुपा के तुरिया जांदा है बुकल कैसी मारी सू पुछे बंदा तू ऐसे बड़ी ठंड वापरन डई किवें बुकल मारी सू जरूर एदे कोल कोई गुजे हथियार होने ने और सू लैण वास्ते तदे अपने आप नू छुपा के ये अपने नेड़े तेड़े फिरदा है महाराज कहन लगे फड़ लो सिखा ने जाके घेर लिया फड़ लिया रोंदा धोंदा कुरलाउंदा बाहां छुड़ाउंदा तरले मारदा गुरु के हाजिर किया गया साहब कलगीधर पातशाह कहन लगे कौन है तू मूह नंगा करके कहन लगा पातशाह तुहाडी शोभा महिमा सुनी मैनू गरीब नू कोई नहीं जानदा मगर गरीब नवाज तुहानू सारे जानदे ने मैं भी जानदा जो कोई तुहाडे बारे सुने है मैं बेनती करांगा मैनू खिमा कर दिओ कौन है तू कहन लगा जी पठान पुत्र किवें आया सा इधर के महाराज एवं बिपता दा मारिया आ गया सिख कहन लगे महाराज आ चादर खुलाओ इहदी पुछो इहदी बुकल विच की है

मिटी है, हिरदे नू शांति प्राप्त हुई, बड़े सुख पाए ने। मेरे ते तेरी रहमत होवे ते होवे के मैं तेरे नाल जुड़िया जुड़िया अपना जीवन सफला कर जा। आपां हुणे शब्द पढ़िया सी ना, डिगन डोला तऊ लो जो मन के भरमा। बंदा डिगदा डोलदा ते डगमगाउंदा सिर्फ उन्ना चिर है जिन्ना चिर मन च भरम ने, दुई भाव है। जिसले हिरदे विचों दोष निकल जान, भरम निकल जान, बंदे नू चैन आ जांदा। मेरा तेरा जानता तब ही ते बंदा, गुर काटी अज्ञानता तब छुटके फंदा। जब लग हुक्म ना बूझता तब ही लो दुखिया, गुर मिल हुक्म पछाणिया तब ही ते सुखिया।

तू बेअंत को विरला जाने को विरला जाने। गाहे सूफी गाहे जाहिद गाह कलंदर में शब्द गाहे सूफी गाहे जाहिद गाह कलंदर में शब्द रंग हाय मुख्तलिफ दारिद बुते अजारे मा तू बेअंत अपनी माया आप सारी आपे देखन हारा नाना रूप तरे बहु रंगी सब तेरे निया तू बेन ब्रह्मा न जाने अंत न पावत देव सभी मुन इंद्र महाशिव जो करी तू बेन अत ऊंचा ताका दरबारा